0: जी ठीक सर, चेंज चेक चुका हूँ, चेंज ऑफ पेज जी अटैच था अभी।
1: Bravo 36, we just know, you can sort of roll way over.
2: Okay.